ओके जी डिजल पुसूरे दिखा लाम दे औसंग माता सुतू लिखना चिलका यो यो कस सपोर्ट कवल और यो कस लमीना मोहब्बत वर कवल ता आगे पखबल निशी कवल जी आगे पैगाम सिर्फ ताउस तो रसोल निशी अकीज सासो रोरी हम कशर हम जूल यमा जुबे सिर्फ सिर्फ दा प्रोडक्ट जुड़ कड़ी दी दगलती अवेलेबल कड़ी दी दगलता हर सक हर सवल अल खलकुता प्रेजेंट कवल और खलकुता द हगी द स्किन हवाली सर खबर ये तरी कवल अगी द मायारो हवाली सर खबर ये तरी कवल आगा समा कर दे अग बस तासु तक कोमा तुझे तासु दे गयो रिक्वेस्ट कोमा तासु पल रूर ला पल कर शर ला दी तापल हम जूरी ला असाम लू दी लम्मी न वर के मोहब्बत न वर के प्रोडक्ट तासु डेर इस्तेमाल हुई यूज अल्ट्राई के यूज अल्ट्राई ओके पाकिस्तान कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान यूज अल्ट्रासु इस्तेमाल के यूज अल्ट्रासु सिर्फ मजीव आखले ब्यागुरी चिता उस द सुम्र बेहतरीन रिजल्ट सुम्र बेहतरीन क्वालिटी सुम्र बेहतरीन क्वांटिटी चिकम देता उस त मिलावेगी कुछ कले यूज अल्ट्रासु इंतहाब ओके यूज अल दजान द पारे रावड़े यूज अल्ट्रासु इस्तेमाल के गुरदा प्रोडक्ट अगिसल ना यूजल चिकम देखा तुम जहर सुमर प्रोग्राम नो कमा जहर सुमर चिकम दे चुगी सूरी वगैरह ता उस खबरी हो कमा तब यूजल ता सवाल है तो प्रोडक्ट की रिजल्ट हुई पदवे मजल बिल्कुल जी ता सवाल है ता सुबह इस्तेमाल के यूज के दर तुम यूजल ता सु सिर्फ पाख ले पदवे मजल बदर ता समा जरूरत ना रासी जी ता सुबह आगे रिजल्ट तक गोरे ता सुबह आगे कमाल तक गोरे ता सुबह चिकम दे ता सु बिल्कुल भी पता लगी शिवा की सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान सुमर बेहतरीन रिजल्ट लरी सुमर बेहतरीन क्वालिटी लरी सुमर बेहतरीन बेहतरीन रिजल्ट पदी किश्ता और सुमर खेस्तवाल पदी किश्ता सासु कान सासु मैसेज सासु पैगाम त्रारवान दी अब लाजी भी जानसर द प्रोग्राम बरखा चोनो मा जिक्र चिदा देसा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान द प्रोग्राम बरखा दा नुस्तासु कान ब मखलम मैसेज ब मखलम ला शामिलों बा लाजमी बे शामिलों खाम खाम शामिलों मा सदा गिना बगैर की गिना

0: तो मुझे पता नहीं मेरे प्यारी भाई, लेकिन डी खान में आपको मिल जाएगी। जब भी आप जाओगे ना, उससे पहले आप मुझसे पूछ ले, मैं एड्रेस बता दूंगा और वहां से आप इंतखाब कर ले। अगर टांग सिटी में हो, मेन सिटी में, तो टांग की मेन सिटी में जरवत खान जी के साथ तमाम प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारी।
1: ठीक है,
0: अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है, बस फिर आप डी खान से ले सकते हैं।
1: चलो ठीक है, इंशाल्लाह
0: मैं
1: कोशिश करूंगा।
0: ओके भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह आपको कामयाब करे।
1: अल्लाह हाफिज,
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।

0: जाता है फिर थोड़ा सा असरअंदाज होती है, टेंशन है, डिप्रेशन है और कुछ हालात ऐसे हैं, हर चीज पे देखना पड़ता है। तो वो फिर जाहिर है कि हम लोग ज्यादातर फिर अपने पे लेते हैं, जब अपने जहन पे उस दबाव को लेते हैं तो फिर उसके असरात तो आने हैं,
1: ऐसी बात है।
0: और इसमें बस यही है कि जहां तक है आप कोशिश करें कि करना तो कुदरत नहीं है, लेकिन बहरहाल हद से ज्यादा भी अपने पे बोझ ना लें, कोशिश करें कि जो एक उसका प्रॉपर हल है वही रखें। अब बाजे अक्सर पेशेंट भी आए हैं मेरे पास, अक्सर के मैसेजेस या कॉल्स भी आ जाती हैं,
1: ऐसी बात
0: तो उसके मुझे सर दर्द की शिकायत है,
1: ऐसी बात है।
0: और हम लोग इसे बड़ा मामूली लेते हैं कि ठीक है यार एक गोली खा लेते हैं वक्त, चाय का कप पी लेते हैं तो बस वक्ती तौर पर सुकून आ जाता है, हम फिर अपनी जिंदगी में मस्त हो जाते हैं। तो अब अक्सर कहते हैं कि यार कभी हमारे माथे में दर्द हो रहा है, कभी सिर के एक तरफ हो रहा है, कभी पूरे सर में, कभी आधे सिर में, कभी आंखों के पीछे, और कभी दर्द हल्का होता है, कभी तेज हो जाता है कि हम काम भी नहीं कर सकते। तो आखिर उनका भी सवाल यही होता है कि इसकी वजह क्या है, या फिर यही है कि हम आर्थिक तौर पे टैबलेट ले लें तो ताकि हम अपने उस वक्ती तौर पे जो हमारे काम अधूरे हैं,
1: ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है कि हम सब हम कर लें। मतलब कि इतना फास्ट जमाना हो चुका है कि हमें अपनी सेहत का ही ख्याल नहीं है, हर बंदा चाहता है कि बस फौरन गोली खाएं और जो हमारा मसला है वो ठीक हो जाए।
0: हाँ उसकी वजह है ना, क्योंकि जाहिर है आज अगर आप फास्ट रहेंगे,
1: ऐसी बात है, हाँ,
0: तो आप भी अपनी लाइफ के अंदर या कह लें इस जिंदगी की दौड़ में शामिल रहेंगे, अगर आप सुस्त रहेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे।
1: सब वो मैं नहीं कह रहा कि यानी कि आपको जमाने के साथ चलना चाहिए, लेकिन आपकी अगर सेहत एक चीज से मुतासर हो रही है, अब आपका सर का दर्द है आपको डेली रात को होता है, आप डेली एक गोली लेंगे तो आप ठीक होंगे, लेकिन हमारे लोग ये नहीं सोचते कि इस मसले से मुकम्मल जान छुड़ाई जाए।
0: वजह यही है ना कि आप उसकी वजूहात पे तो गौर करना होगा ना,
1: ऐसी बात है,
0: उसकी वजूहात पे गौर करें और फिर आप अपने मुआलिज से मशवरा करें, वो आपको बेहतर गाइड करेगा कि आपके लिए क्या बेहतर है और आप इसे किस तरह इससे जान छुड़ा सकते हैं और ये दर्द हकीकत में है कौन सा,
1: ठीक है,
0: पूरे सर का है, आधे सर का है या थकावट है, क्या वजह है, फिर उसको देख के उसके मुताबिक उसका इलाज है। और देसी इलाज बहुत सूटेबल है कि वो आप उसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है,
1: ऐसी बात है बिल्कुल। हाँ।
0: कई दफा मैंने प्रोग्राम में भी कहा है कि आप उसके लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आप फायदा ले सकते हैं, बल्कि जो कह ले टेम्परेरी टेबलेट्स हैं उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उससे आप बच जाते हैं,
1: क्योंकि वो हम रेगुलर लेते लेते हैं,
0: बिल्कुल हम उसके आदी हो गए हैं ना,
1: ऐसी बात है।
0: हम लेते हैं तो जस्ट चंद सेकंड के बाद हम कहते हैं हम बेहतर हैं,
1: ऐसी बात है।
0: तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फिर उसमें आदमी कहता है यार मैं अपने काम पे बैठा हूँ, मैं कंप्यूटर पे हूँ या मैं मोबाइल में हूँ या मैं किसी एक्टिविटीज में, तो फिर मेरे लिए दुश्वारी है। तो बाकी देखना क्या है कि ये इसके वजह क्या है और किन असाब पे दबाव है जिनकी वजह से इसके सर में दर्द है, इसकी नोयत, उसकी शिद्दत, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। फिर उसके गर्दन के पट्ठों में खिंचाव है,
1: ठीक है,
0: इसकी वजह से है। अब हो सकता है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा हो,
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: अब चीज ये है कि ये सारी चीजों की जब तक आप मुआलिज से मिलेंगे नहीं उस टाइम तक इसकी तशखीस नहीं की जाती,
1: ठीक है।
0: बाकी अब वजूहात में आ जाएं तो वो शॉर्टली जो आम कॉमन हैं वजूहात, वो तो वही है कि आप रात को लेट सोते हैं,
1: ठीक है, ऐसी बात है।
0: और ये भी है कि आप अगर 10 बजे के बाद सोते हैं तो फिर आपका जिस्म हीट पकड़ेगा, गर्म,
1: ऐसी बात है। हाँ,
0: एक टाइम है आप एक उसकी एक टाइम तक आप सो सकते हैं, लेकिन जब आप लेट करते हैं तो फिर आपके लिए वो मसला बनेगा, नींद पूरी नहीं होगी तब भी, और बहुत ज्यादा जहनी दबाव ले लेंगे तब भी आपके सर में दर्द रहेगा, आप मोबाइल पे या कंप्यूटर पे देर तक बैठते हैं तब भी, आप आंखों पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं स्क्रीन पे यानी के जमाए रखते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: तो फिर भी उस पे असर आएगा आपके दिमाग पे, फिर पानी कम पियेंगे तब भी आपके सिर में दर्द हो सकता है,
1: ठीक है।
0: खाना आप टाइम से नहीं लेंगे, आगे पीछे करेंगे वक्त को, तब भी मसला बन सकता है। बहुत ज्यादा चाय या कॉफी आप पी रहे हैं,
1: ऐसी बात है,
0: तब भी मसला बनेगा, और आप उसे अचानक छोड़ेंगे तो भी मसला।
1: अच्छा हकीम से, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया कि हमारे यहाँ एक रवाज है कि सर में दर्द हुआ तो हम उसके पीछे

0: ایز اے میڈیسن چائے استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ.
1: بالکل.
0: تو یہ کوئی نقصان دے سکتا ہے؟ یعنی کہ اگر ڈیلی آپ کے سر میں درد ہوتا ہے, اب ایسے پیشنٹس ہیں جن کا ریگولر رات کو درد ہو جاتا ہے سیم ٹائم میں, تو وہ چائے کا استعمال کرتے ہیں, تو اس کے کوئی نقصانات ہیں یہ بتائیے.
1: آپ اسے اگر کنٹینیولی رکھتے ہیں اور روزانہ اس کا اپنے ایک روٹین بنا لی ہے, تو اس وہ تو مرض اپنی جگہ پہ قائم ہے. آپ وقتی طور پہ تو ریلیکس ہو جاتے ہیں چائے پی کے,
0: ایسی بات ہے.
1: کچھ ایسے اجزاء ہیں جو آپ کو سکون دیتے ہیں,
0: ایسی بات ہے,
1: لیکن اس کا پراپر حل نہیں ہے تو وہ نقصان دے گی بہت زیادہ.
0: ایسی بات ہے, کیونکہ جب بھی گھر میں اکثر یہی ہوتا ہے کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ایک کپ چائے پلاتے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. ایسی بات ہے نا,
1: ہمارے خون میں شامل ہو گئی ہے نا چائے, وہ تو ہم باہر سے جائیں یا آئیں طلب ہوتی ہے کہ یار ایک کپ چائے مل جائے,
0: کیونکہ چائے ایک روایت بن چکی ہے. ہمارے گھروں میں جب کوئی مہمان آتے ہیں یا کوئی بھی آتا ہے سو چائے پلائی جاتی ہے,
1: وہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے.
0: حصہ ہے بالکل, ایسی بات.
1: اور اس کا بہترین, بس ہم نے اس کو اب دودھ ڈال کے اس کو چائے بنا لیا. حالانکہ اگر ہم اس کو, کل بھی ہماری بات
0: اسی بات,
1: چائے اس طرح نہیں ہے, چائے کا مفہوم کچھ اور ہے. ہم لوگ اسے پتی پانی میں ڈال کر خوب اسے پکاتے ہیں, وہ جس طرح ہوٹلوں والے دے پھینٹ رہے ہوتے ہیں. تو چیز
0: ہے
1: کہ وہ بس کہہ لیں کہ چائے نام کی ہے,
0: ایسی بات,
1: ٹھیک ہے, اس کی افادیت اتنی نہیں ہے,
0: ایسی بات ہے.
1: اب باقی اس کے ساتھ جو ہے کہ تشخیص جب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جسے ہم کہہ لیں ٹینشن ہیڈکس, یہ بھی سر کے ایک درد میں ہی ہے.
0: بالکل بالکل,
1: ٹھیک ہے نا. اب اس میں سے اس کی قسم کہہ لیں, اب بعض دفعہ وہ سر کے گرد پٹی باندھ لیتے ہیں بڑی ٹائٹ قسم کی, اور کچھ کوئی مالشیں کر رہا ہے, کوئی سے دبا رہا ہے کہ یار یہ چیز ہو, لیکن اصل میں اس کی وجوہات دیکھیں کہ اصل میں وجہ ہے کیا. مستند معالج سے کسی سے مشورہ کریں اور اس کا پراپر حل کریں. سر کا درد ہے, نارملی ہے, کامن ہے, عام ہے, ہو سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. سرد ہوا لگی تب بھی ہو سکتا ہے, کوئی بہت زیادہ شور و غول ہوا تب بھی ہو سکتا ہے.
0: ہاں جی,
1: لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ایک پراپر اس کا ایک سولوشن نکلے,
0: ٹھیک ہے,
1: عارضی نہ ہو, مستقل ہو. پھر آپ اپنا ذہنی دباؤ جو ہے کم سے کم لیں. سوچ فکر ہر شخص کے ساتھ ہیں,
0: ایسی بات,
1: لیکن آپ اس کو اپنے پہ سوار نہ کریں. جب آپ سوار کریں گے وہ آپ کے سر درد کے طور پہ سامنے آ جائے گا,
0: ظاہر سی بات ہے.
1: پھر آپ مسلسل کام کر رہے ہیں بیٹھ کے, اس چیز کو بھی آپ تھوڑا سا ایک سائڈ پہ کریں. تھوڑا سا اگر بالفرض ہے کئی ہمارے ٹیلر حضرات ہیں, درزی ہیں,
0: ہاں جی,
1: وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم جو ہے مسلسل بیٹھے ہیں تو وہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے بیٹھے جاتے ہیں,
0: ظاہر سی بات,
1: مشین چلا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں گپے مار رہے ہیں, وہیں چائے چل رہی ہے. اس میں بھی بہتر تو یہ ہے کہ اگر وہ بیچ میں کوئی 10-15 منٹ کے لیے اٹھ کے ذرا تھوڑی سی واک کر لیں اور پھر بیٹھ جائیں, تو یہ چیز ان پہ کافی ان کی باڈی پہ جو ہے اثر انداز ہوتی ہے. مسلسل کام جو ہے یہ بھی سر درد کا باعث بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد آتی ہے کہ ہمارے بیٹھنے کا انداز, بعض دفعہ ہم اپنے جسم کو مروڑ تروڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اس پہ بھی ہمارے اعصاب پہ, ہمارے پٹھوں پہ دباؤ آتا ہے. خون جو سرکولیٹ کر رہا ہے اس کی سرکولیشن میں بھی فرق آتا ہے,
0: سے
1: وہ آگے جاتا ہے, تو پھر وہ بھی سر درد کا باعث بن سکتا ہے. پھر نیند کی کمی تو ہے ہی ہے, وہ تو ہماری روٹین بن گئی ہے کہ ہم نے لیٹ نائٹ سونا ہوتا ہے, وہ بھی وجہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ تھکن, کہ کام میں ہم اتنے رہے کہ ہم نے اپنے وجود کو حد سے زیادہ تھکا لیا,
0: بالکل ایسی بات ہے.
1: یہ چیز بھی جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. آگے چلیں تو اسی وجہ سے ہی بعض دفعہ مائگرین کا مسئلہ بن جاتا ہے, درد شکیقہ یا سر کا درد ہے. اب اس میں بھی دیکھنا ہے کہ اس میں اور مکمل سر کے درد میں کیا وجوہات ہے, کیا اس میں ہم کس طرح کمپیئر کریں گے.
0: ایسی بات,
1: اسی لیے معالج سے مشورہ ضروری ہوتا ہے. حالانکہ سمٹمز ہیں, سمٹمز سے بندہ پہچان سکتا ہے, کیونکہ وہ تھوڑا سا جو مائگرین ہے یا عام آدھے سر کا درد ہے, یہ عام درد سے تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے.
0: ایسی بات ہے, بالکل.
1: ان میں ایک کہہ لیں کہ وامٹنگ کی سی کیفیت ہوگی, مچھلی کی کہہ لیں کیفیت معلوم ہوگی. روشنی سے وہ دور بھاگے گا, وہ کہے گا یار میں تھوڑا, مجھے اندھیرے جگہ پہ مجھے کریں, کمرے میں اندھیرا کریں, پردے کریں, میں تھوڑا سا اگر وہ इर्द गिर्द लोग हैं तो वो उनसे थोड़ा सा साइड मारेगा,
0: ऐसी बात है जी।
1: वो सुकून चाहेगा, शोर से भागेगा दूर। ये माइग्रेन के उसकी जो पेशेंट है उसके सिम्टम्स हैं।
0: हाँ जी, ऐसी बात
1: है। वहां से जाके और दूसरा फिर ये है कि जरा कोई काम करेगा तो अपने जिस्म में दर्द महसूस करेगा, और बाज दफा तो उसे ये जो बू वगैरह या स्मेल कह लें इससे भी वो एलर्जिक होता है। वो कहता है मैं इससे दूर हूँ,
0: चाहे वो अच्छी हो या
1: चाहे अच्छी है या बुरी है। बुरी से तो खैर दूर होना ही होना है, लेकिन अच्छी भी जो है
0: वो भी सर में दर्द,
1: वो भी उसके लिए तकलीफ देगी। वो कहेगा मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है, और इसीलिए जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करेगा।
0: ऐसी बात है,
1: आंखों के गिर्द बाजू का तारे से झिलमिल झिलमिल से या अंधेरा सा आना,
0: ऐसी बात है,
1: ये चीजें हैं। तो उस पे फिर जो मुआलिज है वो उसको कंपेयर करता है जब उसके सिम्टम या उसकी केस हिस्ट्री लेता है कि ये आधे सर का दर्द है, इस सिम्टम्स के मुताबिक फिर उसका इलाज है। और इसकी वजह से बाज दफा ये होता है कि हम क्योंकि नजर हम मुसलसल अपनी इस्तेमाल करते हैं,
0: ऐसी बात है,
1: बाज औकात हम उसे प्रॉपर सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं करते, तो नजर में कमजोरी, जिस तरह पहले वक्तों में लोग सुरमा डालते थे,
0: बिल्कुल डालते थे,
1: माएं खुद ही डाल देती थी बच्चों को, वो बच्चों को बचपन से आदत पड़ जाती थी, बड़ेपन तक वो आंखों में सुरमा लगाते रहते। अब भी ऐसे बुजुर्ग हैं कि जो अभी भी सुरमा इस्तेमाल करते हैं,
0: ऐसी बात है,
1: उससे आंखों की रोशनी, आंखों की ताजगी बरकरार रहती है और उसकी आंखों की थकावट नहीं होती। और इसकी वजह से भी जब आंखों में कमजोरी आएगी नजर में तो इसकी वजह से भी सर दर्द रहेगा।
0: ऐसी बात है, बिल्कुल।
1: अब उसके लिए भी वो मशवरा करेगा, देखेगा अपने आप को कि यार मेरी नजर वीक हो रही है। तो इस लिहाज से सर दर्द जो है वो एक वजूहत नहीं, कई वजूहत हैं।
0: ठीक है
1: कि आप उसमें देख सकते हैं कि मेरे सिम्टम्स क्या कह रहे हैं, उसके मुताबिक फिर सर दर्द का इलाज होता है। सर दर्द तकरीबन 70-72 किस्म का है।
0: अच्छा, 70-72 किस्म के अक्साम है सर के दर्द?
1: अक्साम है। अब उसमें नोट करना होता है, खाली हम एक पेनाडोल या पैरास्टामोल खा के तो हम वक्ती तौर पे तो सर का दर्द दूर कर लेते हैं,
0: ऐसी बात है,
1: लेकिन बाद में जब वो होता है तो काफी शिद्दत से होता है और बाज दफा वो कोई नया ही मर्ज जो है वो क्रिएट करता है सामने।
0: ठीक है।
1: फिर इसी वजह से बाज दफा ये कह लें कि जिनको नजला जुकाम रेशे बलगम की शिकायत होती है वो भी सर दर्द में मुबतला हो जाते हैं, उनको भी सर दर्द होता है। अब उसमें भी तशखीस करनी होती है कि यार ये इनको नजला जुकाम है, कब से है, इनका रेशा जो है या केरा अंदर गिर रहा है हलक में, दिमाग से उतर रहा है, ये चीज भी उसके लिए सर का दर्द जो है उसकी वजह से भी हो सकता है।
0: ऐसी बात है, बिल्कुल।
1: ठीक है। अब वो सिर्फ कहां से पता चलेगा? वो सिर्फ मुआलिज ही बता सकता है उसको, उसकी तशखीस करके। अपने तौर पे तो उसने गोली खानी है कि यार मैं टैबलेट लूं और वो इस्तेमाल करूं और वक्ती तौर पे मैं अपना काम चाले करूं।
0: बिल्कुल ऐसी बात।
1: फिर बाज दफा हम लोग पानी में कंजूसी कर जाते हैं कि यार थोड़ा पिया, और बाज दफा बहुत ज्यादा ठंडा पिया, खास पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, पानी ठंडा निकाल दिया, फ्रिज से निकाले अभी भी। ये चीज भी नुकसान देती है, सर के दर्द को बढ़ाती है, और पानी की कमी जो है ये भी उसको मसले को बढ़ा देती है। तो इस वजह से फिर कमजोरी आएगी।
0: हाँ जी,
1: चक्कर भी इसी वजह से ही बाज लोगों को आते हैं, कभी मुझे चक्कर आते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद ही तशखीस हो सकती है कि सर दर्द किस वजह से
0: हो रहा है
1: और उसका इलाज क्या है।
0: ऐसी बात।
1: फिर हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, बहुत कम, बहुत चंद लोग हैं जो अपने आप को मेंटेन रखते हैं, उन्होंने शेड्यूल रखा है, लेकिन अक्सरियत जो है वो शायद वर्जिश से वाकफ ही नहीं है। वो वैसे बस कहते हैं यार हम चलते हैं मीलों, या हम बहुत ज्यादा सख्त काम करते हैं, वो उसी को वर्जिश से तशबीह दे देते हैं कि यार यही हमारी वर्जिश है।
0: ऐसी बात।
1: लेकिन अपने जिस्म को एक प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा मूव करना या उसको वार्म अप करना कि वो गर्म हो, तो उसमें फिर पट्ठों में लचक आती है, उसके खून का जो दुरानिया है वो भी ठीक रहता है, तो फिर सर के दर्द का सवाल पैदा नहीं होता।
0: ऐसी बात है, बिल्कुल।
1: फिर बाज दफा होता है कि कुछ लोग खाना ही नहीं खाते हैं टाइम से, काम में मसरूफ है, अच्छा ठीक है रखें जी ठहर के खाएंगे, या अब टाइम ज्यादा हो गया है शाम में देख लेंगे,
0: ठीक है
1: फिलहाल चाय पी ली, बिस्किट खा लिए। ये चीज भी जब आप खाना छोड़ते हैं इसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है।
0: अच्छा हकीम साहब ये बताइएगा कि अक्सर ये आदत भी आजकल नौजवानों में पाई जाती है कि सोने से 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले खाना खा के फिर सो गए रात को,
1: ये भी गलत है।
0: ये भी गलत तरीका है ना?
1: बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैदे का काम है कि आपने जो करा है उसने साथ साथ उसका काम जारी है,
0: ऐसी बात है,
1: वो उसको हजम कर रहा है।
0: हाँ हाँ,
1: तो वो जितना आप जल्दी खाते हैं और आप उतनी देर में अपने घर में मसरूफ रहते हैं कामों में, तो उससे खाना मैदे को हजम करना आसान हो जाता
0: ऐसी
1: है,
0: बात है।
1: और दूसरी बात है कि वो लाइट किस्म का होता है, कोई इतना ज्यादा हैवी नहीं होता। फिर आजकल ये वाकई फैशन सा बन गया कि ठीक है यार बेड के ऊपर ही खाना है,
0: ऐसी बात,
1: और शॉर्ट से टाइम में फिर लेट
0: दोपहर को भी यही होता है और रात को तो अक्सर यही मामला चलता रहता है।
1: तो चले किसी हद तक है कि वो बाज में लिखा है कि आप कलोला करें, जैसे थोड़ा सा आराम कर लें वो बेहतर है, लेकिन खासकर क्योंकि दिन में आपने थोड़ा आराम भी कर लिया, उसके बाद आपने अपने मामला भी करने हैं,
0: ऐसी बात है, अपना चलना चलना है, ऐसी बात,
1: तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन रात में ऐसा नहीं है, और खसूसन जैसे अब मौसम सर्द आ रहा है तो इसमें भी ऐसा ही है कि इसमें रातें तकरीबन बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे होते हैं, तो आदमी कोशिश करता है कि यार बस ठंड है तो मैं जरा जल्दी से बस खाऊं और अपने बिस्तर में पहुंचूं। ये चीज नुकसानदेह है, उसको टाइम दें। फिर कोशिश करें कि बहुत ज्यादा चाय का, कॉफी का इनका इस्तेमाल ना हो, एक महदूद मुनासिब मिकदार में हो जाए तो वो
0: ऐसी बात है,
1: फिर भी ठीक है, चल जाता है। लेकिन अगर आप मुसलसल चाय पे हैं कि जरा सा थकावट हुई, चाय ले ली, गोली खा ली, चाय ले ली, या सुबह दोपहर शाम वो एक चाय तसलसल से चल रही है, तो वो चीज फिर नुकसान दे सकती है और उसकी सर दर्द की वजह भी बन सकती है। और उस वजह से फिर आप, हालांकि चाय सर के दर्द को दूर करने के लिए आप चाय पीते हैं,
0: ऐसी बात है,
1: तौर पर वो सुकून देती है, लेकिन वो एक जब मुसलसल आदत बनेगी तो फिर आपका सर दर्द जो है वो चाय से भी नहीं जाएगा,
0: जाहिर सी बात है। ये तो
1: फिर आपको उसके लिए प्रॉपर एक दवाई लेनी पड़ेगी,
0: ऐसी बात है,
1: और तब जाके वो आप उससे छुटकारा पाएंगे।
0: बिल्कुल ऐसी बात है।
1: फिर नींद जो है वो तो लाजमी है, नींद के बगैर अगर आप कहें, वैसे है कि 7-8 घंटे आप प्रॉपर नींद लें,
0: ठीक है,
1: लेकिन कुछ काम की नोयत ऐसी होती है कि लोग कुछ 2 घंटे, कुछ 4 घंटे, कोई 1 घंटा, लेकिन जितनी भी नींद है प्रॉपर तरीके से नींद हो, नींद में ये ना हो कि यार बस मैं उठा हूं, जैसे सोया हूं 10-15 मिनट के बाद मैं उठ गया हूं, उसको प्रॉपर कुछ टाइम दें, प्रॉपर नींद करें,
0: ऐसी बात
1: तो
0: है। हाँ।
1: फिर आप जो है उसका आप सर के दर्द को नहीं अपने पे सवार करेंगे, और ना ही कभी ऐसा होगा कि आपका सर में दर्द हो रहा है। कोशिश करें कि आप अपने टाइम पे सोएं,
0: बिल्कुल,
1: और जो है ज्यादा देर तक किताब है, मोबाइल्स है या कंप्यूटर्स है, इनको ज्यादा देर तक इस्तेमाल ना करें,
0: ऐसी बात,
1: अपने दिमाग को सुकून दें, अपनी निगाहों को सुकून दें, आराम दें, तो फिर सिर का दर्द का सवाल ही पैदा नहीं होता।
0: ऐसी बात है कि हम सब, वैसे आजकल किताबें तो कहीं दूर ही रह गई हमसे, आजकल मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बस यही चीजें, आजकल तो हम एक दूसरे से भी बात नहीं करते,
1: ऐसा ही है।
0: अब आजकल देखें आप किसी महफिल में कि जहां पर 10 बंदे बैठे हो, पहले आप हमसे बड़े हैं हकीम साहब, तो आप खुद ही बताएं कि आपके यानी कि पहले जमाने में जब 10-15 लोग आपस में बैठते थे तो बातें क्या करते थे, आजकल जब 10-15 बंदे भी बैठे होते हैं ना, अपने अपने मोबाइल में बिजी होते हैं।
1: वजह यही है कि आप बहुत दूर हो गए ना, हम उससे फितरत से दूर होते जा रहे हैं,
0: ऐसी बात है। हाँ।
1: अब आर्टिफिशियल जिंदगी में कदम रख चुके हैं और उसी वजह से हम ज्यादा डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, अगर वही हम फितरत के ज्यादा करीब हों तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिस्म इतनी जल्दी खराब हो जाए। बाकी दबाव है, परेशानी है, स्ट्रेस है, ये एक कॉमन मसला है, इसको आप तकरीबन हर आदमी कह सकते हैं कि वो ज़हनी तौर पर बेचारा परेशान है क्योंकि हालात ऐसे हैं, लेकिन उसको आप अपने पे हावी ना करें, आप सोचें जरूर, उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालें, लेकिन चीज ये है कि आप इतने दबाव भी ना लें कि मुसलसल आप सरदर्द के मरीज बन जाएं,
0: ऐसी बात है,
1: ठीक है ना, उसको आप ले सकते हैं, आप لائٹلی لیں, اس کا حل تلاش کریں اور اس کے بعد اسے ذہن سے جھٹکیں.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: ورنہ جو ہے پھر وہی ہے کہ دوائیاں ہیں اور آپ ہیں.
0: ایسی بات ہے, آپ ہیں اور دوائیاں ہیں.
1: بالکل. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ دوائیوں کے گرد نہ گھومیں, اور دوائیوں سے جہاں تک ہو سکے آپ دور رہیں, اور اسی میں ایک فٹنس کا راز بھی چھپا ہوا ہے کہ آپ دیر تک اپنے وجود کو قائم بھی رکھ سکتے ہیں اور مضبوط رکھ سکتے ہیں. باقی کچھ لوگوں کا جس طرح پہلے بات ہوئی ہے, یہ گردن کے پٹھے جو ہیں یہ اکڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تناؤ وغیرہ آتا ہے تو کندھوں میں آ جاتا ہے, یہ بھی بعض دفعہ سر کا درد باعث بن جاتا ہے. اس سے بھی کیونکہ سارے پٹھے اپنا کام کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے بھی سر کا درد ہو سکتا ہے. اس کی وجہ کہ مسلسل آپ ایک ہی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہو, آپ اپنی پوزیشن ہی تبدیل نہیں کر رہے, تو جب آپ کے اعصاب سن ہو رہے ہیں یا اکڑ رہے ہیں یا تو وہ پھر آپ کے دماغ کی طرف بھی جو ہے اس کا اثر جائے گا اور آپ سر درد محسوس کرو گے.
0: یہ تو ہوگا.
1: بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو نیچے کی طرف جھکا لیتے ہیں. ٹھیک ہے,
2: اٹس 2 o'clock, آورلی ٹائم چیک is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.

अच्छे भाई, आपके बाल बहुत प्यारे हैं और मैंने लाइक भी दिया है। आप कहाँ गए थे? पंजाब। अच्छे भाई, नो टेंशन, शैम्पू यूज करते हो, मेरे बाल आपकी तरह प्यारे हैं। आपकी बहन रसिया भाई, आज प्रोग्राम करोगे रात को, जवाब दे प्लीज। गुरु बाचे खुश भाई, हसीना गुल सलाम दर कवि और प्रोग्राम आवरी व्यस्त खूब और अच्छी के सलाम। हसीना गुल टेंशन शैम्पू में से मिलावे आपके लिए बदरिस्तान से मटक लाए हैं भाई। ओके मनना सीमा बोरे खुशाल ऐसे एक नसीब मेरा साथ नहीं देता, एक नसीब मेरा साथ नहीं देता और फिर से जिंदगी हर मोड़ पर रुलाती है। मेरा मन से साबिया वैसे और ओके से उदय पे एडिट रहा लेंगे, लेकिन मैसेज रहा चले पे एडिट ही रहा लेंगे बढ़के नाजमान भी बगे गम न गना दखेर सरा दगा डिट वो यही गना सी ये खुदा या बगा सुमु खियार आने या जाना नजर में यो पता कड़ा ले नूर में खिलाफ दे टू लगा ले नूर में खिलाफ दे टू लगा ले गुल गुल आवरी दुन को खबर आवा आवरी गुरे دیمیش دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان جس سمر ہم پروڈکٹس آئیں انشاءاللہ تاسو لب ریزلٹ در کی کھلا بدر کی خاصی ضرور استعمال کی ضرور رواخ لے خاصی دا یو غزل دی دا سمڑے ر پسند ہے سی سیدے گن سی او مف خیال سی اخ دے او کا گن دے سی ڈیر کھلے دے سی دا مڑے ر پسند ہے خاصی اس گور مچا گ دے کنا سی او کا گ وینو اخ ڈیر جات ما پسند ہو خاصی ٹول تڈا لے خاصی پسند ہے۔

0: अपन चंगा होंगे क्योंकि मुंह खुश्क नहीं करेंदा
1: चेहरा
0: ग्लूटा वाइट हो या मिल्की हो सारा कोई भी साबुन इस्तेमाल करे सो चेहरा खुश्क नहीं थी ठीक है जी
1: तो
0: सात फ्लेवर ठीक है
1: सात फ्लेवर में आ गया मैं ठीक है तो मैं मिल के आ गई तो एक मैं चाहे था मैं को यार आयल शैम्पू पानी में था वो ये
0: तो
1: वही मैं बोली था
0: माशाल्लाह
1: तो हिंदे काल में पूछा ही मैं गाल लेकिन उसकी क्या कहना है कि मैं को फायदा करने वो किन्हन था
0: फायदा क्या किन्हन था उसको शाम के रखने उसको इस्तेमाल करो
1: अलग कभी आई सही कभी इस्तेमाल ये रुक रहा है
0: मामा तो लवली क्रीम ही ना करो भाई तू साफ़ है माशाल्लाह इस्तेमाल करें भी पहले तो जरा
1: मैं यार उन्हीं मांगी मैं को आ कहे मैं लवली क्रीम ही गोल्ड क्रीम ही
0: हाँ
1: लोशन ही मैं कहे
0: लोशन ही भी गोल्ड क्रीम ही भी तेल ही भी शैम्पू ही भी साबुन ही भी फेस वॉश ही नहीं हर चीज़ है हुकम सब चीज़ मिलती हाय सेंट वध कोनी ते कल तुसा कल छोटे सेंट जरे ने केसन दे ओ थोड़े शॉर्ट इन रखन कल परसो आ वैसे तो भिजवा दे सो
1: लगदा यो लग जी या बेजान जी या कोनी वेगले लोग लगदा ही
0: नहीं नहीं बस तो को इंशाल्लाह कल परसो तोरा भी ऑर्डर आ रखे से भी ऑर्डर आवे से उन नाल सेंट ही तोरे पहुंच जासे अकबर इंतजार आ भी ठीक है सही हाँ कितना बहुत मेहरबानी शुक्रिया जनाब नवाजिश और ये दुकानदार है जनाब और ये जो हमने प्रोडक्ट बनाई है ना लवली फेस दिन की लगाने की क्रीम है दिन को लगाने वाली ये क्रीम है और ये फेयरनेस फार्मूला है और फेयर एंड लवली बचपन से हम क्रीम लगाते आ रहे हैं जनाब और देखते हैं हर घर के अंदर भी होती है और बहुत कम कंपनियां कामयाब होती हैं उस फार्मूले तक जाने के लिए लेकिन ये एक दुकानदार है जो कह रहे हैं कि मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ 1% भी फर्क नहीं है और कीमत का जमीन आसमान का फर्क है ठीक है जनाब क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के इश्तेहार टीवी के हर चैनल के ऊपर चलते हैं उनके करोड़ों रुपए के अखराजात होते हैं यही वजह है कि वो कीमत इतनी ज्यादा रखते हैं हालांकि फार्मूला सेम वही है जो हमने लॉन्च किया है सेम आप जो भी यूज करते हैं वो यूज कीजिए कि 250 रुपए की जनाब हमारी जो 250 रुपए की हमारी ये क्रीम है लवली फेस के नाम से और फारूक भाई कह रहे थे भाई ये भी अगर महंगी है तो फिर हालांकि हमने दो वेरिएंट लॉन्च किए हैं ये जो फेयरनेस क्रीम है ना लवली फेस दो जा रहे हैं हमारे एक 150 वाला है ठीक है जनाब 150 रुपए का और दूसरा जो है वो 250 रुपए वाला है तो वो कह रहे थे कि 250 वाला ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम एमबी साहब
2: वालेकुम सलाम सर जी के हाल है
0: कि हाल है चंगे वदे हुए ठीक ठाक
2: अल्हम्दुलिल्लाह बस सब को सुन रहे बैठे हैं साहब
0: ताहिर फरूक दुकानदार है वे सर गालियां सुन दे पे उन्होंने ही की प्रोडक्ट को
2: गालियां सुनी है बड़े मोहब्बत है लोग इन कैसे ना लोग के सारे ना बहुत लोग मोहब्बत कर रहे हैं सब पता ही कौन
0: है जी यकीन करो ये तो सबको हाल तक पता ही कौन है तो कुछ लोग सब कॉल करके या मैसेज करके दिसे ना इन अलावा साइलेंट भी बहुत सारे लोग हैं यूजर अलहमदुल्ला बहु ताहिर फारूक भाई जरा ना मुल्तान रोड ते इन्हां दी भाई दुकान है महल्ले दे विच अटक वाला जरा पंप है उंदे नाल गली दे विच पता करे सन इन्हां दे आपड़े गाहक बहु इन सारे लिसनर बहु इन ते दसण दी जरूरत नहीं होंदी ओ पूरा इलाका मुरियाली ते सारे इथे सारे प्रोडक्ट मिल वेंदे इन्हां दे
2: कोल
0: ओ डिटे वैसे ही यानी कि छोटे जी उंदे दुकान है लेकिन केसन दे सत सत फ्लेवर रखे ने सही मंगो तुसा ते पैसा दे इतने खरे बंदे ही वे सबको ये बंदे बहुत चंगे लगते जो इन्हे तो जी माल वेंदे दूजे हाथी पैसे दिवा भी है अफनान शॉपिंग सेंटर भाई वजीर आलम भाई उन्होंने ना है उन्होंने यकीन करो उन्होंने को लूंगा गैन ना स्किन क्लियर दे भाई ने आके भाई जिवे दी सकते है मोटरसाइकिल से पहुंचाओ गद्दी से पहुंचाओ जैसे पहुंचाओ मैं को शाम तक त्रीय क्रीम चाहिए तू बंदे ने डू डू दर्जन ऑर्डर बढ़ा के सारे भेजे तो पैसे पहले भेजे ने के भी पैसे आने पे किराया पैसे ना लिवे तो बस मेरे समान भेजो तुसा

0: जी जनाब, खूबसूरती का नया सफर। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मौका देंगे उन्हें। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील भाई, क्या हाल
0: है जनाब? क्या हाल है मोहतरम? अच्छे हुए, ठीक ठाक सही। शबीर उस्ताद सनल केज कोल मौजूद इनके जी, सारी आवाज साफ आनी पड़ी है सही।
1: जी जी क्लियर आनी पड़ी है। मुसलमान को देवे थे उस दे उमरा मुबारक अहले खाना को जो रहना सारे अहले खाना को उम्र हाजी सादा नसीब अता फरमावे।
0: जी आमीन आमीन सुमा आमीन। ता पर लो तोरे नजदीक थी मैंने पहाड़ पूर की तरह परते तो नहीं मेरा ख्याल है जी।
1: पता नहीं चारी है कल 6 तक लगे वनी जो गदी कोले कोले की कम गया खाली मेरा आप मेरे वर तो आते उस का कोई प्रोग्राम है सही जो कल सा शायद निकल वनी विजिट करे सु नजर आसान तक थे मीने फेर तक सारी लिसनारी दिन इंशाल्लाह। बाकी फिर स्किन क्लियर जो है माशाल्लाह जो है ना पहुंच चुकी है सभी नवा ब्रांड है चार तक हिस्सा है चार तक कंप्लीमेंट का लाजमी डाले जो वो जो है ना हर कोई निकी सुख जो हर जो सी या पुरानी कोई कोई कमी बेची स्कीम रह गई सी या दिल दीता उम्मीद है जो चार तक को बच न सकती
0: इनशाला चार सीरम ताकतवर किस्म दे एक्टिव जेरा के आज तक कोई कंपनी ऐड नहीं कर सकी ही को ज्यादा नहीं करेंगे ठीक है ना। एक होता असर चार ते ओ जेरा लोगों ने नाम ही हुन सुने होसन इतने तक के तुसा ना तुसा जेरे कंपनियां बनावण वाले क्रीमा इन जेरे नु मैं दे सब कुछ सुन दे पे होसन उना ने ने इना सीरम दे ना हुन सुने से लोग सिर्फ ग्लोटा थोन सीरम जान दे ते विटामिन सी ते वाइटनिंग सीरम जान दे इन अलावा लोगों को नहीं पता होंदा ते यकीन करो लिसनर ते लिसनर मैं आदा के कंपनी दे नुमाइंदा कोई पता ना हो सी कि ऐसे सीरम आ चुके हैं जेरे की जड़ को खत्म करन दे चाहियों को या को साथ है एजलिक एसिड ट्रांजेमिक एसिड ठीक है जनाब ए उनों को पता ही ना हो सी जेरे की असा तो को उना दी क्रीम बढ़ा के त्वरे तक पहुंचा देती है सी।
1: बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह क्योंकि ये जरा दाग धब्बे हैं ना ये एक महीने के बारे में खत्म थी हमारे खत्म लेकिन बाद वक्त लोग ये करें यार कोई करें या कोई या इलाज मॉल या डॉक्टर को करें शायद कुछ वक्त थी गई है तो ये उम्मीद है जो इंशाल्लाह का हिया के ना दे जरा मसला
0: जड़ को खत्म करने की सलाहियत रखे हैं ए सीरम पुराने को पुराने दाग धब्बे छाइया को जड़ को खत्म करना सही जिवें शिफाए दर्द दर्द को जड़ को खत्म करें ना सही पेश कर दिता इंशाल्लाह यूज करो सारे एतमाद करो इंशाल्लाह सबको दसो कि भाई तुसा एक 450 रुपया ला के कितना फायदा हासिल किते सारी इन
1: प्रोडक्ट को अपना जो है ना विजिट करेंगे खत्म थी वैसी तो इंशाल्लाह और साकू उम्मीद है जो सारी उम्मीदा तो जो है ना पूरी उतरती
0: इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह कोशिश करसा तो सैंपल्स कुछ भेजसा जेरे के अपने इलाके देख गिरो जेरे के मुस्तहिक जिन्हें स्किन खराब थी तो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकते लेकिन चेहरे के मसाले उन्होंने पेश करे सो ठीक है देसो ताकि ये रिजल्ट तो सामने आवे सन लोगों का एतमाद मजीद ही सादी केसन ते उए ही तो इंशाल्लाह ये फायदे थी वैसे उन्होंने ठीक है सही
1: अल्लाह पाक पहले भी केस आंदी कई कंपनी क्योंकि तुसा पहले मुतारिफ करवाया को पहले ये मुतारिफ करवाई है और यूजर रिजल्ट पूछ देवे अगर वो कामयाब थींगे तो ठीक है कि नहीं तो कंपनी को जवाब क्या देंगे तो ये जो है पहले पहले जो है ना थोड़ा जो है टेस्ट होना है ना ये टेस्ट इन्हों का होंगे ताकि जो है यकदम इकट्ठा खर्चा थे और नाकाम थे तो सारा माल फेल थे तो मैं अच्छा करेंगे चंद छाया चंद आइटम भेज देंगे अगर वो रिजल्ट आवेंगे तो कंपनी को आदमी तैयार करो अगर नहीं आए तो बिल्कुल बंद कर दो तो आज तक बिल्कुल ये भी कंपनी थोड़ी ये भी प्रोडक्ट है माशाल्लाह वो पहले रिजल्ट दो गई है रिजल्ट जो है वो मिश्रण को लाए आवाम को लाए तो तुसा बड़ा आधार दिक्कत पीछे इस वजह को शराती थी रिजल्ट अच्छा निकलता पी होता है लाजमी गाल जितना भी तादाद भी चाहे तो गिनने वाली ज्यादा होने यूजर पे पिछे कदाई माल आंदा तो चावल आंदा तो ये शॉर्ट वक्त थी ताकत प्लस है माशाल्लाह ਤਾਕਤ ਪਲਸ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੱਧੇ ਗਿਲਾਸ ਜਾਂ ਗਿਲਾਸ ਖੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਤੈ ਡਬਲ ਸਿਬਲ ਥੀ ਜਾਂਦੇ ਤੈ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਧ ਅੱਧਾ ਗਿਲਾਸ ਖੀਰ ਦਾ ਤੈ ਗਿਲਾਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲ ਥੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅੱਗਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਚਾਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਣ ਸੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਰ ਹਸਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਐਮ ਡੀ ਸੀ ਐਮ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ
0: थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, शॉर्टेज की बात कर रहे थे और हमारी एक प्रोडक्ट फिर से शॉर्ट हो गई थी और वो है शिफाए दर्द, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो फिर से आ गई है। ठीक है जनाब, मसला क्या हुआ था, क्यों पिछले 15-20 दिन शिफाए दर्द नहीं था, टांग के अंदर भी शॉर्ट था, पहाड़पुर के अंदर भी बहुत ज्यादा शॉर्ट था और अब तो दुकानदार हमसे लड़ने लग गए थे और हर दुकानदार दो दो तीन तीन दर्जन का ऑर्डर थे। मसला ये था कि हमारा जो ऑयल है शिफाए दर्द, ये आम जड़ी बूटियों वाला तेल नहीं है, ये आम पाकिस्तान में मिलने वाला तेल नहीं है, ये बाहर से आता है, इम्पोर्ट होता है। ऑस्ट्रिच जो होता है ना, ये अफ्रीका के जंगलों के अंदर पाए जाते हैं, वहां से ये हम तक पहुंचता है और बाजू का तो इसकी क्लियरेंस के अंदर बहुत सारा टाइम लग जाता है। ठीक है, जब कंटेनर जब आते हैं पोर्ट के ऊपर रुकते हैं, उनकी क्लियरेंस के अंदर बहुत सारा टाइम लग जाता है। पाकिस्तान की कोई चीज होती है तो फौरन पहुंच जाती है, लेकिन यही वजह है कि हमारी ये प्रोडक्ट जब भी शॉर्ट होती है पूरा पूरा महीना भी नहीं होती है। तो जो शिफाए दर्द इस्तेमाल करते हैं वो अपने पास एक एक्स्ट्रा जरूर रखा करें। ठीक है जनाब, क्योंकि जो इसका आदि हो जाता है, जो सुकून इससे मिलता है, फिर वो रह नहीं सकता। ठीक है जनाब, तो वो इस वजह से लेट हो गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टॉक सफिशिएंट आ चुका है और ये कल रवाना हो जाएगा। टांग में बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, वहां पर भी चला जाएगा। पहाड़पुर में सबसे ज्यादा शॉर्टेज थी, ढोतर अड्डा के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर, पहाड़पुर के अंदर बहुत सारे ऑर्डर, रंगपुर अड्डा के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर जो पेंडिंग हुए पड़े हैं। और कल का दिन जो सारी हमारी सप्लाई होगी वो सिर्फ शिफाए दर्द की होगी, पूरे इलाकों के अंदर डेरा टांग और पहाड़पुर में सिर्फ, किसी और चीज की सप्लाई कल नहीं होगी, सिर्फ इसके कार्टन जाएंगे हर जगह, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी और लोग भी कॉलिंग कर रहे थे। केसन शॉप पर भी नहीं था, बाजारों के अंदर भी नहीं, कहीं पर भी नहीं थे। तो वजह ये थी कि जब तक हम तक प्रॉपर चीज नहीं पहुंचती है, हम दो नंबर चीज बनाकर नहीं बेचते हैं। जब एक चीज हमारी है नहीं, पाकिस्तान की बाहर से आती है, तो हम आपको पाकिस्तान की चीज कैसे दे सकते हैं। तो वो जब तक क्लियर नहीं होती तो हमें भी वेट करना पड़ता है, आप लोगों को भी वेट करना पड़ता है। तो कल से इंशाल्लाह जो है आपको केसन शॉप के ऊपर भी शिफाए दर्द मिलेगा, टांग के अंदर भी मिलेगा, पहाड़पुर के अंदर भी मिलेगा, हर जगह पर जहां जहां शॉर्टेज थी आप लोगों को पता है, क्योंकि आप बार बार जा रहे थे और वहां पर आपको नहीं मिल रहा था। तो कल से इंशाल्लाह आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा केसन शिफाए दर्द। आगे सर्दी आ रही है और जितने दर्द सर्दी के दिनों में होते हैं गर्मियों में नहीं होते, तो ये प्रोडक्ट जो है स्पेशली ये जो सर्दियां आ रही है इनके अंदर दो चीजें भाई बहुत अहमियत की हामिल है, एक ताकत प्लस, क्योंकि सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट सर्दियों के अंदर खाया जाता है, जिस्म के अंदर दर्द सर्दियों के अंदर होते हैं, तवानाई की कमी सर्दियों के अंदर होती है क्योंकि पानी कम पीते हैं और चीजें कम पीते हैं तो एनर्जी का फुकदान होता है बेसिकली। तो ताकत प्लस के ऊपर भी डीपली बात करनी है आप लोगों के साथ, कल बात करेंगे। चूंकि लॉन्चिंग डेज हमारे चल रहे हैं नई प्रोडक्ट की, तो आपका बेहद शुक्रिया जनाब, जो जो लोग केसन शॉप पर आके खरीदारी कर रहे थे। मैसेजे, सलाम सर, शो इज वेरी नाइस, मैं बीमार थी इसलिए मैसेज नहीं कर सकी। टांग से अननोन जिन्होंने अपना नाम हमें बताया हुआ है, और चलो जी अल्लाह ताला आपको सेहत दे, शिफाए कामला आजला दे आपको, और सेहत के साथ ही

नमस्ते जी, कौन है? खैर हुई खलील भाई, आज तो बहुत मजा कर रहे हो जनाब। अजमत खान बलोच एंड कसर गुल मर्दान पुल से हमारे साथ है, मर्दान पुल से मेहरबान बेबी हमारे साथ। सलाम भाई, मैं कुदसिया शहजादी। भाई मेरे कजन की चेहरे पर बहुत ज्यादा दाने हैं जिनकी वजह से दाग बन गए हैं, उसके लिए कोई क्रीम, ये जो हमारी इस वक्त आप लोगों के पास क्रीम पहुंची है केसन स्किन क्लियर फार्मूला, यही लें, आपके दानों को भागता करेगी ये क्रीम, ये तो बताओ जिससे उसका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाए। मेरी तरफ से तमाम बहनों जिनके मुझे नाम नहीं आते हैं, बर्फी वाला सलाम भाई। मैं केसन का शैम्पू, ऑयल, मिल्की सोप, ग्लूटा वाइट क्रीम एंड फेस वॉश यूज कर रही हूँ एंड आई लव यू केसन, केसन मेरी जान है। जी जनाब, हर बहन का ख्वाब है, हर बहन की जान है केसन नेचुरल पाकिस्तान, क्योंकि केसन आपके ख्वाब जो पूरे करती है। सलाम सर, के यू हया खान हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, सलाम जी, सलाम सर, के यू हिना कहाँ है? अच्छा जी, मैसेज कर रहे हैं, पता नहीं कौन है, पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं। खूबसूरती का नया सफर जनाब शुरू कीजिएगा, और बहुत सारे लोग जब खूबसूरती को लेकर कोई भी क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ मसले मसाइल कभी हो जाते हैं, उनकी स्किन को क्रीम सूट नहीं करती है, लेकिन ये सीरम्स पर मबनी इतना एडवांस फार्मूला है कि तकरीबन हम ये इस वक्त उम्मीद कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को अगर 100 में से एक दो आ जाए तो और बात होगी, अदरवाइज 98% 95% तक लोगों को ये फार्मूला सूट करेगा, क्योंकि इसको तकरीबन हर किस्म की स्किन के ऊपर टेस्ट करके आप तक

अनुषा, अनुषा भी हमारे साथ मौजूद हैं सेडला बिल्डिंग के सामने से हमें सुन रही हैं जी। बहुत शुक्रिया, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। किसन की नई प्रोडक्ट स्पेशली स्किन क्लियर फार्मूला, सर्दियां आ रही हैं, कोल्ड क्रीम और साथ में डे टाइम क्रीम, लवली फेस को जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।

0: ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशीला। हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف

0: तड़ाई माजे में जी दार तो ये जी पदशा पर सीधे तशा हो कसी दी
1: जनाती से तारखे ना पशा पर के हम एश्मा वाशिंग पाउडर हो कसी दी
0: एश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी महु कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपनेवल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक कीजिए दस रंगे सारा पुरोवरे
1: बिल्कुल तारखे ना दा गिले वे हर वक्त तो मुता हाँ कुर्श डाले हो चे कला ना में कुर्ता एश्मा वाशिंग पाउडर उड़ल से रिकड़े दी और स्टोन कुर वाला ना पाशोल दी
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर से रबरों वो दर तो ये या चेप एश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे कहना एश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात एश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी वो बला खबर अदा कपड़े सब ही बवाद लोसीना नखर पाई
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट या दाए दर तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे कहना दाओ तो दफा बने अंदरून लाकी गेट जान से भी गाले पर शोए मार्केट से देश में मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर से मिला भी जी।